एक बार जिन तुमैं संभारा कालफास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दाले हो उबारी सर्ब ठौर मोहो हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल बिख सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छै करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछ फल पावै सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल सुना गुंग जो याहे सो रसना पावई सुना मूढ़ चितलाए चतुरतावई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहा हो जो या कि एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणजै अर्ध सहस पुनतीन कहजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पौ ए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो

गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कहो छाड़ कै गहो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर तपा।

विस्माद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रु विस्माद नंग है प्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खान।

मुसलमाना सिर्फ शरीर पर प्रकरें विचार बंदे से जे पावे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ईसाला दर्शन रूपे अपार तीर्थ नाम है अर्चा पूजा अग्रवास बैकार जोगी सुनत हम जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सत्यवन संतोख उपजै देने के विचार दे दे मंगे सह सगुणा सोब

पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सचता तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

शाम कै सितंबर स्वामी सच में अच्छे साज रहे सबको सच समावे रिक कह रहे भरपूर राम नाम देवा में सूर नायल प्रसिद्ध जय नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रा में।

0: ऊपर कोनी में न कोई धरता राजू तुलिये निमिष गौरा हुई अपराधी दुणा निवे जो हंता मृगाए शीश निवाया क्या थिया जहर देख सुधे जाए महला पहला
1: पौर पुस्तक संध्या बादं शिलभोष बगल समादं मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपा तिहाल विचारंग गल माला तिलकले लाटंग दोए तोहती वस्त्र कपाटंग जय जानस परम कर्म सब फोकट ने

तो वै स्वपनंतर संसारो ज्यो बाजीगर परम भूला झूठ मुठी अहंकारो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रते गुरपूरा राखे नानक सहज सुभाए वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसारो वा सचा घर सचड़ा सेवी है सच खरा सचारो वा कूड़ लब जा थाए न पासी अगै लह न ठाओ अंतर आओ न बैसहो कही है ज्यों सुन्या घर काओ जमण मरण वड्डा वेछोड़ा बिनसा जग सुबाए लब धंदा माया जगत पुलाया काल खड़ा रूआए।

नानक जुग जुग जान सजाना रोवै सच समाले पै रोवै गुण सार समाले को मरै न मोया नाले नानक जुग जुग जान सजाना रोवै सच समाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गुरु प्रसाद सिंह जी हो, विछड़ी आत्मा की याद में मुख रखद परिवार वालों गुरद्वारा साहब विखे सहज पाठ प्रारंभ करवाई गए सन। अंतम अरदास वेले गुरबाणी कीर्तन बाणी के पाठ विछड़ी आत्मा की याद करद गुरु पातशाह जी बख्शिश कर विछड़ी आत्मा आवागम के गिर तो बचाद्या हो परिवार को भाणा मन का बल बख्शन जी। हूँ सत्कार जो ज्ञानी जी रखे हुए सहज पाठ के भोग पाउणगे, उस तो उपरंत अंतम अरदास आप सारे ने शामिल होना है जी। होइयां भुलां बख्श देनियां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾਮ ਕੋਰ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ

सतगुर प्रसाद। राग माला राग एक संग पंच बरंगन, संग लापह अठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही,

सब जगत पैरी पाए जियो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। मन वजिया वादा हिया, राग रतन परवार परिया। शब्द गावने आईया, शब्दो ता गाव हो हरी केरा। मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया।